0: whenever you like. You can reach me on WhatsApp 604-305-2510. And you can find us on all social media platforms. Instagram is where I'm usually at, Lady B Radio. And chete rakhna ki apna time hon 25 slot de vich chale gaya. So every Friday you can catch me on 96.1 FM 8:30 to 11 p.m. That's 8:30 to 11 p.m. So, फिर मैंनू हुआ दियो इती अजाजत हास दे हसां देरो अपन दोबारा फ्राइडे मिल दें उदो तक much love, peace out, रब रखा यार
1: काफी हो चुके हैं कई ये नू सौ काम भी हुंदे ने कर तो साड़े आज दे प्रोग्राम दी आखरी आई
2: Lady B's Last Pick